0: जम के साथ न जाए।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
0: मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ च्यों परगट जाए।
1: मन्ने मगन चले पंथ मन्ने धर्म सिद्धि संबंध।
0: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
1: मन्ने पावे मुख द्वार मन्ने परवार साधार।
0: मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक पावे है ना भिख।
1: ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए।
0: पांच परवान पांच प्रधान पांच

0: असांख नाव असांख साव अगाम अगाम असांख लो
1: असांख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा
0: अखरी लेखन बोलन बाण अखरा सर संजोग बखान
1: जिने लिखे तिसे नाहे जे फरमाए तिप ते पाहे
0: जेता कीता तेता नाउ बिन नामे नाही को थाउ
1: कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार
0: जो तुद भावे साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार
1: हाथ पैर तन देहे पानी तो तै उतरसके
0: मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये ओ धोए
1: मत पापा के संग

0: एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान
1: जेब तिस पावे तिवे चलावे जेब होवे फरमान
0: ओह वेखे उन्ना नदना आवे बहुता एहो विदान
1: आदेश तिसे आदेश आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस
0: आसुन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार
1: कर कर वेखे सृजन हार नानक सचे की साची कार
0: आदेश से आदेश आद नील नाद नाहत जुग जुगे को वेस
1: एक दो जीवो लख होवे लख होवे लख वीस
0: लख लख गेड़ा आखिए है एक नाम जगदीश
1: एत राह पत पवड़िया चढ़िए होए अकीस
0: सुन गल्ला आकाश की किटाई रीस
1: नानक नदरी पाईए कूड़े कूड़े ठीस
0: आखन जोर चुपे न जोर जोर न मंगन दे न जोर
1: जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मन सोर
0: जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार
1: जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए
0: राती रुती तिथि बार पवन पानी अग्नि पाताल
1: जिस बिच धरती थाप रखी धर्म साल जिस बिच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत
0: करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
1: तिथे सोहन पांच परवान नदरी करम पवे निशान
0: कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए
1: धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म
0: केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश
1: केते बरमे घाट घड़िए रूप रंग के वेस
0: केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश
1: केते एंद चंद सूर केते केते मंडल देश
0: केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस
1: केते देव दानव मुन केते केते रतन सुमुंद
0: केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नेंद
1: केतिया सुरती सेव केते नानक अंत न अंत
0: ज्ञान खंड में ज्ञान पर तिथे नाद विनोद कोड आनंद
1: शर्म खान की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप
0: काकिया गला कथिया न जाहे जे को कहे पिछे पछताए
1: तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़े सुरा सिद्धा की सुध
0: कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर
1: तिथे जोध महाबल सूर तन में राम रहा भरपूर
0: तिथे

0: Namo Sarva Roge,
1: Namo Sarva Poge, Namo Sarva Jitang, Namo Sarva Pitang,
0: Namo Sarva Gyan, Namo Param Tarang, Namo Sarva Mantra, Namo Sarva Jantrang,
1: Namo Sarva Drisang, Namo Sarva Krisang, Namo Sarva Renge, Tarpangi,
0: Namo Jeev Jeevang, Namo Bheev Bheje, Khije, Pheje, Samastang Prasije,
1: Kirpalang Sarupe, Kokarmang Parnasi, Sada Sarva Dare, Dasedang Nevasi, Charpat Shantva Prasad,
0: Namo Karmi Ambar Tarme, Khal Joge, Chal Poge,
1: Achal Raje, Akal
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने
1: सर्वं प्राणे सर्वं त्राणे सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले
1: रुवाल शंतवाय प्रसाद
0: आदि उपनाद मूर जोन पुरख पार
1: सर्व मातर मान देव पेव आदो दार
0: सर्व काल सर्व कोपन काल
1: चिरतर तत्र विराजय

0: आशीष दिशा के आप पिसा के आगंज कर्म के आपज भरम
1: के
0: राज के धर्म तो जाए के आसुक वर्ण के सर्वा भरण
1: है
0: के आप अभिवें चतरंग विहीन के दिन
1: है
0: के शाहन शाह कारण कुनंद गुरु जी दह
1: दही रहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली
0: सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र
0: के सर्वत्र अंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र
0: सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश
1: है के सर्वत्र मानी है सदैव प्रधानी है के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र
0: सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है
1: के सर्वंग कली में के फरमंग फरी में के आकल हला में के साहेब
0: के ओसनल वजू तमाम रुजू है में सो सलाम है सलिखत मदाम है
1: गरीब अल शिकस्त है गरीब अल परस्त है बिलंदल मकान है जमीन अल जमान है
0: तमाम रुजू अल निदान हरि फल जीमर जाय के यकीन है
1: अनेक कुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीज अल निवास है गनीमल खेरा
0: है।

0: भूतां प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुदा है
1: सदैवंग स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साजे
0: सलाम सदैव काम निर्वास रूप है गाद अनूप है
1: ओम गाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रिवादी गंजी गादी शुभम सर्वभाग्य सर्वानुरागी
1: त्रिभुक्त स्वरूप है छिज है छूत है के नरकंठ पर नास है पृथ्वी और पर्वत
0: प्रभा सदा वंग सदा भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
1: सदा है।

0: सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जगतः सर्वं मुक्तः नरकनाशे सदैव प्रकाशयन्नङ्गं स्वरूपे भंगं विभूते
1: परमाथं
0: परमाथे सदा सर्वसाथे
1: अगाध स्वरूपे निर्वाद
0: भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्रे न

0: गवायो।
1: आज के वख्यान सो बैठ के ऐसी ही ऐसी सुबह सुबह तायो।
0: साच कहो सुन ले हो सबै जिन प्रेम कियो ते नहीं प्राप्त पायो।
1: पावला पाहन पूछ तरे सुर काहुन लंगर लट

0: ताक कर पाहने अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत
0: आप अपनी बुद्ध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती
1: तुमरा लखा न जाए पसारा केहवे सजा प्रथम संसार
0: एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई भूपा
1: अंडक जेरज से तज गिनी उत्भुज खान बहो रच देने
0: कौं कुल राजा हो बैठा कौं सिमट भयो शंकर अकैठा अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संग रो
1: सकल
0: मलेश करो तब शरणी परि तिनके दुष्ट दुख तो हुआ मरे
1: जबन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब
0: डरे कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है
1: रक्षा होए ताही सब काला दुष्ट रिश्वत तत्काल कृपा
0: दृष्टि न जाए निहर हो ताके ताव तनक मोहर हो
1: सब
0: एक बार जंत में संभारा काल फास्ते ताए उबारा
1: नाम तिहारो का दार दुष्ट दोख तेरा
0: हरो कीत में शरण

नमः श्री गुरुदेवाय नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माह मिटावो सिमरो जास विशंभर कै नाम जपत अगंत निकै वेद पुराण सिमर सुदाखिर किने राम नाम के आखिर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोह उधारो सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन।

प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै प्रभु सिमरत कछु बिगन्ना लागै प्रभु कै सिमरन दिन जागै प्रभु कै सिमरन भौ न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्व निधान नानक रंग प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तद बुद्ध प्रभु कै सिमरन जब तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगा मानी प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरन जिने आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए प्रभु कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभु कै सिमरन उदरै मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सुझै प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दास दसना प्रभु को सिमरै से धनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन परवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बहुमोहताज है प्रभु को सिमरै से सर्व के राज है प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन के मंगर वाला प्रभु कै प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन मल रीता प्रभु को सिमरै तिन आनंद कन्या।

ओत पोत जन हर रस राते हैं सुन समाद नाम रस माते हैं आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत।

रहे सा संग में छोरे। जे को जन मरण ते डरे साध जना की शरणी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ता केवल बल जासा। सगल पुरुष

निस कहिए तब समझे पोरा। कहाँ विष्णु पद गावे गोंग, जतन करे तो पिशुरपांग। कहाँ पिंगुल पर्वत पर पवन, नहीं हो तो उहाँ उस गवन। करतार करुणा में दीन बेंती करे, नानक तुमरी कृपा तरे।

तो आचार विहारी तिस प्रभु को सासा चितारी। जे प्रसाद रसंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा नूप। जे प्रसाद निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रह गुरु प्रसाद नानक जस कह। जे

अवर्या सत्संग हजूरी जिसका सब तिन लिया मलाई नाग भक्ति नाम समाए सो को बिसरे जे घर लपाने सो को बिसरे जी किया जाना है सो को बिसरे जे सब किछ दिया सो को बिसरे जे जीवन जिया सो को बिसरे जे अग्न में राखै गुरु प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरे जे विकते काडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुरे तत एह बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया सान संत करो आम आंतक पुरना सिमर सिमर सब पाव आव जप पुरना आव जपाव भगत परे भगत पाए तरिय संसार बिन भगत जन सिसार सब कल्याण सुख निध नाम भूत जात पाए बिसराव सकल दुख का उतना सुनारत ना जप गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मानता नंद से आओ नित रूपिक दस सुख होय मन बख्श सा चरण तोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग वस्त जे करमया गुर प्रसाद नाम जप मलया ताकि उपमा कही ना जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभु बख्शांदी दयाल भक्त विश्व सदा कृपाल अनंत नंद गोविंद कृपा सुखता कर प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपे सोए पनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीचे जान नानक तुमरी शरण पुर पकवान सर्व गुण मुक्त मुख पाए कुनिम खार के गुण गाय अन कराय बहु बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु पाजन का प्रसंगीत बहु पूजन का प्रसंगीत रसना जपी है हर नीत भली सुकरणी सो पात्र मंत्र हृदय से पूर्ण गुरमंत सासंग पवदि निवास सब सुख नानक प्रगास लोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जा पष्टपति जबे कार एक अशना दृष्टिता पापन तप कहते हो ता जब तारी अपन सो समात है बैर बोल संकमात जब इसका वरण चिन्ह जाप तू तो भरक सो को कुछ व्यापत जब अपना पाप पार ब्रह्म ता मोह कहा किशोध परम आपन खिरा वृतीजा नान कर निहा न दूजा जब हो प्रभ केवल धनी दा बंद मुक्त को कुछ नहीं जब एक हर

निर्मलता के कर्म है, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमणि। जिस मन पसे सुन राय प्रीत, तिस जन आवे हर प्रभ चेत, जन्म मरण ताका दुख निवारे, दुर्लभ दे तत्कार उदारे, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माए समानी, दुख रोग बिन सह पै भरम, साध नाम निर्मलता के कर्म, सब ते उठता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुखमणि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नमोत्तम मसूदे राम नाम सारस्वी व्यास पंडित केवटी जग जी वैर की कथा यदि विसावे सुपंडित फिजू नावे वेद प्रांत समत बुझे मूल है ना सुख में जाने स्थूल है चौ वरना कुदेव देश नान कुश पंडित कुशला देश भी मंत्र सर्व को ज्ञान जो वरना में जपे गु नाम जो जो जप देश कहते हुए शासन को जन को एक कर कृपा अंतर उतारे पशु प्रेत मुख पात को तारे स्वर्ग रूप का खुद ने आम कल्याण को कल्याण रूप मंगल गुण गाव कहा युक्त कितना पाइये धर्म नांग तस्मल जिस लिखा तुरु कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सत रामदास आदम रात सुनद रियाया दात सुंदर पैतन पाया सदा निक निक हर जान सूत आदर के प्रमाण अपने दास को आप कृपा करे तिस तास को सब सोजी पर है सगल संगात मोदास ऐसे युक्त नानक रामदास प्रभ की आज्ञा तुम हितावन जीवन मुक्त सुख हावे तैसा हर तैसा शोक सदानंद तय नहीं प्योग है तैसा स्वर्ण तैसी समाटी तैसा अमृत ऐसी विखाटी तैसा मन तैसा ममान तैसा रंग तैसा राजा जो वरताई साई युक्त नानक ऊपर कही जीवन मुक्त पार उनके सगले ठाऊ जित जित का रखे तैसा तन नापे कन क्रामण जुग प्रभ पावे सोई फोनो पसरु आप अंत रंग लखन जाए पार ब्रह्म के रंग जैसी माते तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिम सुनन पहने हाल सलोक है उस तत् करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहुबिधन प्रकाशपति कई कोट पुजारी कई कोट आचार बुहारी कई कोट पतीर्थवासी कई कोट पर परमे दासी कई कोट बित के स्रोते कई कोट तपसर होते कई कोट आत्म त्यान तारे कई कोट कप का विचारे कई कोट नवत नव त्यावे नान करते कंत न पावे कई कोट पहमानी कई कोट अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिकातम कोर कई कोट पद दर्प को हरे कई कोट पर दुख न कराय कई कोट माय श्रमवाय कई कोट प्रदेश प्रमावे जित जित लाभ हो तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सत जित जोगी कई कोट राजस्पोगी कई कोट मुख्य स्वरूप पाए कई कोट पात्र वृक्ष उपजाय कई कोट पौनपणी संतर कई कोट दस मंडल कई कोट सत्य सुरन खतर कई कोट दीव तार इंद्र सर सतरा सकल समग्री अपने सुतार है नाग जो जिस पात तिस निस्तार है कई कोट राजताम सात कई कई कोट पेद प्रासी मतर शास्त्र कई कोट कीरत संबंध कई कोट नानक प्रकाशंत कई कोट की चरजीव है कई कोट गिरिमिर स्वर्ण थीव है कई कोट चक साच कई कोट पूत पे सुख मृगाच सब ते निर सबूत दूर नानक आप पवित्रया भरपूर कई कोट ताल के वासी कई कोट नरक सुरक निवासी कई जोड़ कई कोट जन्म जीव मराए कई कोट वजोनी फिराए कई कोट बैठती खावे कई कोट घर थक पावे कई कोट चेतनावंत कई कोट मां पै वचन तय जय पाणा तय तय राखे नानक सब किस प्राप्त की हाथी कई कोट पै बरागी राम नाम संगतन लागी कई कोट प्रभु को खोजंत है आत्मै पार ब्रह्म अंत कई कोट दसम प्रभु प्यास तिन को मिले प्रभु नास कई कोट समागे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जन को हुए आप सो प्रसन्न आग दे न सदा तन तन कई कोण खानी कई कोट खानी अखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट अवतार जग कई जुग किनु विस्तार पई पर पसरु पास हास तास अहंकार कई कोट किन बपात प्रभ तो प्रमा समाता के अंदर जाने को आपे आप नान प्रभ सो कई कोट पात के दास तीनो बताप तुम प्रगास कई कोट तत् के बेत स्थान हर एक नित्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पै सब सती जीव है कई कोट नाम कुन गावे तुम रस सा सह समाव है आत्म रस सुख सह समाप अपने जन को सा सह समारे नान को परमेश्वर के प्यारे सलोक है कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नाग तुस्पलार ने जल तल भैया सो इष्ट पति कर्ण क्रावण करने योग जुत पाए सो ही होक मिताब तो अपना रा तन किश पारा वारा हुक्म तार दुरहावे हुक्म उपजे हुक्म समाए हुक्म उच नीच बहार हुक्म अनकरंक प्रकार करके देखी बड़ियाई नाग सब मेरे समाई प्रभ पावे मन गत पावे प्रभ पावता पत त्रावे प्रभ पावे शास्त्र राखे प्रभ पावता हर गुण पाके प्रभ पावता पत तारे आप कृप बिचाए दूसरे क्या स्वामी के लिए बख्शी अंतर जाम्बी जो पावे सो कर करावे नानक दृष्टि अवर राय का मुक्त क्या हो आवे जो तुस पावे सोई करै इस कर तु सब कुछ लै जो तुस पावे सोई करै अणजाणत भिख्या मैं रचे जी जानत अपन आप बचे भर में पूला दै दुस्तावे नि प्रचार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भक्ति नानक तेजा नाम लै खिन मैं की नीत की खिन मैं नीत की कुरा पारू की जाका दृष्ट का सुना तुस तत्काल दै दस पटावे जाको अपनी कर भक्ति इस ताका लेखना अपने जगदीश सजीवपन सब तुस्की रास खटखट पूर्ण परम प्रकाश अपनी बनता अपनाई जानक जीव दिख पढ़ाई इसका बलना ये सात कर्ण करा सर्व को ना ताक करी पपरा जीव चुत पाए सोई फनती हो कबू नीच में बस कबू सो खर कर रंग सह कबू निंद चिंद व्यवहार कबू उब काश प्याल कबू बेता पमुचा नानक ना पलावना कबू नत कर व्यपार कबू सोई रह दिना कबू महाक्रोध काल कबू सब की हो तरवाल
कबू होए बहे बड राजा, कबू बुखारी नीच का साजा कबू।

करनी सचता की रह साच हृदय सात मुख है साची दृढ़ साचा आकार सच वर्त है साचा पासार पार ब्रह्मजन सच कर जाता नान सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग केश त्रिगुण ते प्रभिन्न सब जाए नान काज सो वै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मै राख मानुक की तुम प्री त्याग तिस्ते परह नाई किश कोय सर्वनिरंतरे को सोया बिना आपे दाना गैर गंभीर गहिर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपण दान दयाल बख्शान साथ तेरे की चरणी पाओ नानक मन होन राव मन सा पूर्ण शरणा जोग जो कर पाया सो योग हरण भरण जाका नेतर वोत्सका मंत्र न जाना हो रण द्रो मंगल सद जाक सर्व थोक सुनिय करताक राज मैं राजोग मैं जोगी तब मैं तभी सर्गस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नान तस पुरख अग्न अंत न पाया जा की लीला कीमत नाय सकल दीवार अवगाय पिता कजन कि जाने पो सकल प्रो अपने सो समात ज्ञान ध्यान जन दे जनदास नाम ते आवै चेते गुण मै जाखो परमाय जन्म मेरे फिर आवै जाय ऊच नीच तिसके अस्थान जिस नावै तैसा नानक जा नाना रूप नाना दाकी रंग नाना भे कर करा नाना बिदकिनो विस्तार प्रभ बिनाशी कंकार नाना चलत करे कर माय पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिदकर बणत बनाए अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीव नानक हर नाम नाम कि धारे सगले जंत नाम कि धारे खंड ब्रह्मांड नाम कि धारे सिमृत वेद पुराण नाम कि धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम कि धारे आगास पाताल नाम के धारे सगले आकार नाम के धारे पुरिया सब भवन नाम कैसा गुदरे सुन सरावन कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाखा सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान कर तू सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माही समाणी सत कर्म जाकी रचना सात मूल सात सत उत्पाद सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बजाय सह सब भली सतनाम प्रभ का सुखदाय विश्वास सत नान गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जा कर दाय परवे सत नृत बूझे जे कोई नाम जब ताक गत हुए आप सत किया सब सात आपे जन अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ सो करण हार अवन बुझ करत विचार करते कि मैं तन जाना किया नान ज्योत स्वभाव है सो वर्ती है विश्वन विश्व भय समाज जिन बुझे साय सुबाद प्रभ कह रंग राजन रहे गुर कह वचन पदार्थ लय ओए दाते दुख काटन हार जाके संग तरै संसार जन का सिख सोवड़ भागी जन कै संग एक लिव लागी गौन गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आदि सच जुगाल सच है फे सच नानक होसी फे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्न हार पूजा सत सत सेवदा दर्शन सत सत बेखनार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुण आपे गुणकारी शब सत सत प्रभ भक्ता सुत सत सत सत सुनता बजन हार खो सत सब हो नाम सत सत प्रभ सोय सत सरूर दै जन मान्या करण कराव निर्मूल पछान्या जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान समान प्रगटाया पैते निरप हो बसाना जिस ते उपजै समाय समाना बस्त माय लि बस्त गडाए ताको पहनण कह न जाय बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का शिव सदा पुजारी ठाकुर की सेवक है मन प्रतीत ठाकुर की सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जान है संग प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक को प्रपालन हारा सेवक की राख है निरंकारा सो सेवक प्रभु धार है नान सो सेवक साह सा सुमारा अपने जन का पर्दा ढाक अपनी सेवक की सर पर राख अपने दास को देव डाई अपनी सेवक को नाम जपाई अपनी सेवक की आप पत राख तागतमत कोई न लाख है प्रभु के सेवको को न पहुँचाए प्रभु के सेव कुछ दे उचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेव दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल राखा है पसम कराए लश्कर कूट लाखाए जिसका सास न काटते आप ताको राख दे कर हाथ मानस जतन करत व भांत तिसके करता बिरथे जात मारण राखा वरण कोय सर्व जियाँ का राखा सोय काय सोच करै रे प्राणी जप नानक प्रभु लख बड़ानी बार बार बार प्रभ जपी है पी अमृत मन तंत्र पी है नाम रतंजन गुरमुख पाया तस्के शबर नाय दृष्ट आया नाम तन नाम रूप रंग नाम सुखर नाम का संग नाम रस जो जंत्र पताने मंत्र नाम है नाम समाने ऊर्त बैठ सोत नानक नानक जन कह सदकाम बोलो जह जे बदन रात प्रभ अपने जन की नींद आद करे भगता तुम कह चाय प्रभ अपनी सुराय समाय जो हुआ होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पछान की महिमा कौन बखान उसका गुण का एक न जानो आठ पैर प्रभ सहजूरे कौ नानक से जन पूरे मन मेरी दिन की उठ ले मन तन अपना तिन जन दे जन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोका दा तस्की शरण सर्व सुख पावै तस्के दर्श पाव मिटावै

ਤੇ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗਾ ਵੰਜਾ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਤ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਨ ਜਾਣੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਾਲੇ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖਾਂ ਆਲ ਪਲ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛ ਨਾ ਜਨਾ ਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਰ ਦਾ ਸਤੇ ਆਵੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਤ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੋ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤੁਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਆਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੋ ਸੇਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਅਨਕਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ ਸਰਬਨਾਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬਨਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤ ਆਠ ਪੈਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਬਲ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਕਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰਸ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਪਿਠ ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਦਲ ਗਾ ਗਵੇ ਸੁਣ ਕਰ ਵਚਨ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀ ਆਨੇ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਰੱਖਿਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ ਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵੇਖੋ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵ ਵਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੇ ਬਾਏ ਪੁਸਤ ਅਨੇਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਆਉ ਬੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨ ਨਿਰਾਹਰ ਨਿਰਭੈ ਸੁਖਦਾਇਤਾ ਕੀਮਤ ਕੇ ਨੈਨਾ ਪਾਏ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨਤ ਕਰਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲੇ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਇਆ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਣੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਖੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਉਮਰ ਸੋ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਬਿਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣ ਦਾਸ ਆਠ ਪੈਰ ਹਲਕਾ ਨਾਮ ਲੇਸਾ ਚੁਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖਾ ਹਰ ਹਰੇਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਵਰਗਾਸੀ ਨਾਨਕ ਬਰਮੋ ਦੁਖ ਤੈ ਤੇ ਨਾ ਸੇ ਤਾਪ ਤਮਾਇ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਅਨੰਦ ਬੈ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੀ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਨਿਰਭੋਏ ਬਸੀ ਸਗਲ ਵਿਆਹ ਮੰਤੇ ਕਹਿ ਨਸੀ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਨਾ ਮੁਰਾ ਸਿਧ ਪਾਏ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਾਵਨ ਸੁਰ ਨਾਨਕ ਹਾਰਾ ਜਸ ਸਰਵ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਰ ਗੁਣ ਭੀ ਹੋਈ ਕਲਾ ਧਾਰਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਆਪੇ ਪਾਏ ਹਰ ਬੰਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰੇ ਕੋਸ਼ ਹੋਏ ਉਤ ਪੁੱਤਰਾ ਪਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਭੈ ਬਰਗਾ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਾਜ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਗਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋਕ ਸਾਥਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਾਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨ ਨਾਨਕੇ ਉਤਨ ਸਾਰਾ ਸ਼ਪਦੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਾ ਆਧਾਰ ਅਵਰ ਪਾਸਾ ਉਮੀਦ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕਮਰ ਦਮੈ ਔਰ ਤਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਠ ਸੁਪ੍ਰਭ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗੋ ਨਾਮ ਅਰਵਾਤੇ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ ਸਰਵ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜਿਸ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਉਠਤਾਵੈ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਕੁਨਤ ਬਾਚੈ ਮੇ ਸੋ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀ ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੈ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਅਨਕੋ ਭਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟਾਰ ਔਖ ਦਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਦਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਰ ਕੈ ਨਾਚ ਦੈ ਦਸਤਾਵ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾਏ ਤਾ ਕੋ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾ ਗਏ ਕੋਈ ਜਾਕਰ ਦੈ ਬਸਾਰ ਸੋਇ ਕਲਤਾ ਤੀ ਠੰਡਾਰ ਨਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ ਭਉ ਬਿਨ ਸਹਿ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਭਇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸਾ ਬਿਨਾ ਸੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਨ ਸਾਚਾ ਜਨ ਵਰਾ ਸੁਖਾ ਚੁਕਾ ਚਾਇਆ ਵਾਗਵਨ ਮਿਟਾ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਤਿਆਗ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇਓ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰਨ ਕੋ ਭਾਵਨਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿਮ ਸ਼ਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬੰਚਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਸ ਤੇਰਾ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵੈ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ਸੁੱਤ ਮੀਤ ਕੁਟਾਂਬਰ ਮੰਤਾ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਵਨ ਸੁਨਾਤਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਿਸਾਰ ਇੰਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ਅਸ ਹਸਤੀ ਰਾਥ ਅਸਵਾਰੀ ਝੂਟਾ ਡੰਬ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ ਜੰਦੀ ਬੁਜਨ ਬਿਗਾਨਾ ਨਾਮ ਬਸਾ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੋ ਲੇ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਨਾਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਇ ਆਪ ਜਪੋ ਅਬਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਓ ਸਾਰ ਪੁਸ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ਸਹਿ ਸਵਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵ ਤੇਰੀ ਉੱਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਨ ਸਜੈ ਮੈਂ ਬਕਪੈਲ ਹੋਏ ਚੰਦ ਬਸੈ ਸੁਖਮ ਆਸਾਸ ਗਰਾਸਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਾੜ ਸਿਆਨਪ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ਸਾਧ ਸੰਭਾਵੈ ਸਚ ਧਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰੀਆਂ ਸੁਖ ਦਰਗਹਿ ਜੈਕਾਰ ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰੇ ਕੋ ਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖੇ ਕੋ ਜਾ ਪੇ ਕੋ ਸਾਲਾ ਏਕ ਸਿਮਰੇ ਕੋ ਮਨ ਆ ਏਕ ਸਿਕੀ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ ਮੰਤਨ ਜਾ ਪੇ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕੋ ਏਕ ਆਰਿਆ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਅਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਏਕ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਗਏ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰੇਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨਾਨਕੀ ਭਰਾ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਾਂਜਾ ਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵ ਵਰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਮੰਗ ਤੂਰ ਪਾਰ ਬੰਬਿਲ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਸਾਹ ਸਾਸ ਭਗਤ ਮੈਂ ਤਿਆਵ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੁਮ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤ ਨੀਤ
एक ओटे पुआ धारू नानक मांग नाम प्रभ सार प्रभु दृष्ट मान सुख हुआ रस पाव बिरला को जिन चाख्या से जंत्र पतानी पूर्ण पुरख नहीं डोला नहीं सुपर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध के संग परे शरण आन शब्द अगंतर प्रगा संदन बुलाव भागी जपया प्रभु सोए नानक नौरते सुख हो सेवकी मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु हो दयाल सेवकी नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन मरण दुख भ्रम गया शपनी शरदा सा पूरी रव रहा सत्संग जूरी जिसका साधन लिया मिलाए नान भक्ति नाम समाय सोकम बिसरा जी काल न भाना सोकम बिसरा जी किया जानाई सोकम बिसरा जन सब कुछ दिया सोकम बिसरा जी जीवन जिया सोकम बिसरा जी अगन मैं राख है गुरप्रसाद को बिरला लाख है सोकम बिसरा जी भक्ति काट डाय जन्म जन्म का टूटा गण डाय गुरपुरे तह बुझाया प्रभ अपना नानक जनते आया साजन संत करो कामा त्याग जपो अर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाओ आप जपो अभर नाम जपाओ भगत पाए तेरी संसार बिन भगत तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख नद नाम बूढ़ जात पाए बिसरान सकल दुख हो तनास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रचाओ मंत्रा तरी सुहाओ नेत्रों पेख दर सुख हो मन मिकसै साध चरण तोय भगत न कह मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करम है गुरु प्रसाद नाम जप लय ताकि उपमा कही न जाए नानक रह सर्व समाए प्रभ क्षण दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदपुर कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होय पुनीत भगत पाए लाभ है मनहीत हमने गुणियारणी चो जानु नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुण मुक्त मोख पाए कि निमख हर के गुण गाय अनकराज भोग वड्याई हर के नाम कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर अरनीत पली सो करनी सो बात नवंत हृदय वसे पूर्ण गुरमंत सा संप्रदि निवास सर्व सुख नानक प्रकाश लोक सार गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही प्रजा पशुपति जब कार्य कृष्ण दृष्टि तापा पंदव कहते उता जब धारी अपन सुन समात बैरूर संक मात जिस जब इसका बार न जाप तब हर सो कहो किस व्याप तु जब अपने आप आपार ब्रह्मता मोह कांक शोभत भार मो अपन खे लावर तीजा नानक करण हार न दूजा जब होत प्रव केवल धनी ता बांध मुक्त कहो किस कहो गणी जब एक रग मा पार तब नरक सुर कहो कौन होता जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव साकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत रहे तब कव निडर कव निकत डर अपन चलते आप करना हार नान ठाकुर अगम पार बिना सी सुख अपने आसन जन्म मरण कहू का बिना जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहू किसोए जब अवगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गोपत किस पूछ लेखा जब नाथ निरंजन गोचरिया गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन माधे अपन आप आप ही चरदा नानका अपन रूप आप ही ऊपर जा निरंजन जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहू क्या धोता जय निरंजन रंग कौर निर्भाव ते कौन कमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल छिद्र लगत कौ की जय जोत स्वरूपी जोत संग समाव है तय कसै भूखा बंदर पताब है करण करावन करने हार नान करते का नाय समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन भाई बा मित्र सुत भाई जय सर्व कलाप है परवीन तय वेदक देव कहा कुचीन जब अपने आप आप और धारे तो शगन अपशगन कहा बिचार जय अपन ऊचे अपने आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चीरा बिस्मन बिस्मरहि समाद नानक अपनी गत जानू आप जय शाल शीद भी समाया वहां किसै व्याप्त माया आपस को आप है आदेश ते उनका नाही प्रवेश जय एक एक, एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय आपन आप आप अतियारा तय कौन कथै कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊंचा नानक आपस को आप है बहुचा जय आप जो प्रपंच कह ते गुण किन्नु विस्तार पापोन तय पही कहावत कौ नरक कौ स्वर्ग मन छापत वाल जाल माया जंजाल मैं मोह परम भय पा दुख सुख मान अपमान प्रकार की अपन खिलाप कर देखे खेल संकोच तौर के कहजा अभगात भगत है आज पसर पासा संत प्रताप दऊ पाका आप धनी उनकी शोभा बनिया पै कौत कर चूजा पर भोगन जो जिस भावत सप नाई लाभ जिस भावत खेल खिलाव बेशुमार था गण तो तोलै ज्यो बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टा रसपति आखता सुनने आपे का विस्तार जंस भावत सृष्ट पापन पहन लय समाई तुम ते भन नहीं कुछ होया अपन सो सब जगत पुरोहन जाको प्रभु जीवा बुझाए सच नाम सोए जन पाए सो सुंदर सीता तका बेता नानक सागल सृष्ट का जेता जी जंतरु सप्ता कह हा दीन दयाल नाथ को नाज सराख सो कोई न मारे सो मोह मनो बिसाराए
तेस्ता जावर कहाँ को जाए सब श्रेक निरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बार जानू साध गुण दान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूरे दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्ता बजाना आप अंतर जामी रहो ब्या प्रतपाल जी अनुभ भांत जो जो रचो सुत सत्य आदो जिस भाव सलय मिलाई भगत करें हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मन आं करना नानक के जानिया जन ला कर कह नाय तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक हो सेवा बनाए हुकुम बुझ परम पद पाए सिउ पर नहीं विचार जाका मन बसया निरंकार बंधन तोर पय निर्भय रंदन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपह मेले साह संग मिल करो आनंद गुण गाओ पर परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरण का सुआठ पैर पापे को नेरा मिटया ज्ञान बिनसया अंधेरा सुनो उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हक पद दुइ लिहु सुभा राम नाम अंतर धार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसाच परिखिया मन तन ना जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पऊ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दर गन बह खेप तुम्हारी काटे रखो मन बाय नानक बहु ना वह जाए तस्ते दूर कहा को जाय प्र रख नार त्याय नर पाओ जपाय सकल पाओ मिटा प्रभु कृपा ते प्राणी छुटा जिस प्रभ राखत सना ही दुख नाम जब तुम हो वसु चिंता जाय मिटा अहंकार जन को कोई न पुंचन हार सिर उपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरिया मजा के दृश दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ उचरण कम जाके अनूप सब दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा से प्रभान अंतर जामी प्रख प्रधान जिस मन बसय सोत निहाल ताक निकट नावत काल अमर भय अमरा पद पाया सा संग नानक हर ध्याया सलो ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान धीर विनाश हर कृपा ते संत पेटे आहो नानक मन प्रगास अष्टपति संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु काला गा मीठा सकल समिग्री एक स्कट मायान करंग नाना दृष्टाय नौ निज अमृत प्रभु का नाम दे मैं इसका विश्राम सुन समाधान हतः नाथ कह न जाई चर्च विस्मातिन दयक श्राप दिखाए नाम दस जन सोजी पाए सुवंतर सुबहर अनंत घट घट व्याप रहे भगवंत धरण माया काश पयाओ सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बस अंतर बाई चार कुंड दिशे संभाव तिस्ते पर नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण स्मृत में देख सस्य सूर नक्षत्र मय को वाणी प्रभु की सब को बोला पोडूल कब हूँ डोलाय सर्व कलाकार खेला खेल मोल न पाए गुणा मोल सर्व ज्योत में जाकी जो तार स्वामी उत्पोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तनमय हो विश्वास संजना कह पिखन सब ब्रह्म संजना कह हृदय सब धर्म संजना सुन सब वचन सर्व्यापी राम संगरचन जिन जात की रहत सत वचन साधु सब कहत जो जो हो सो सुख मान करण करावन हार प्रभ जान अंतर बस बार पियो नानक दर्शन देख सा मुआ सत किया सब सात प्रति सगली उत्पात स्वभावता करे विस्तार भवत एक अंकार अन कला लखी न जाए जिस भाव सलय मिलाए कब नकट कौन कही है दूर आप आप हर पूर अंतर गज साप जनाए नान तन आप बजाए सर पुता वरतारा सर्व नैना पे खनारा सगल समग्री जाका तनाव पंजा साप ही सुनाव नन खेल बनाया गया कारी की निमाया सब कह मद लिप तू रह जुक्ष कहना स्वा पे कह आग्ञा वह आग्ञा जाए नान जा पावत लय समाए ते हो सुना ही बुरा उर कहो हो कहना कश करा भला कर तू ततनी की आपे जाना अपने जी की आप साज धारी सब साज उदपोत अपन संगराज ताकि आत्मत कही ना जाए दूसरो तसु जी पाच का किया सब प्रवार गुरु प्रधान के जान जो जानत सदा सुख आ मिलाए लाए प्रभु सोय तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मोक्त श्रद्धा भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जना उनका है सुहाहु जन कह संग चित आवै नावा मुक्त मुक्त करे संसार नाम तस जन कहो सदा नमस्कार श्लोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपति पूरे गुर का सुनो उपदेह पार ब्रह्म कर पे खौ सा सा सिमरु गोबिंद मन अंतर की उतरे चंद आसन त्याग उतरांग समझना की धूल मन मांगा शुड़ बेनती करो सात संगा गण सागर तर हो हर तन के पर लियो भंडार नान गुरपुरे नमस्कार खेम कुश सहज आनंद साह संग भज परमानंद नरक निवार उदारू जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमोलिक लाल रतन सुन तो कमाव तो हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सब जीवन सब ताका संग जाका मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे शरण जोग सुन शरणी आई कर कृपा प्रभाव मिलाए
मिट गए भैरू भई सबरे नम्रत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न भई गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेवा जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनरसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु तारी नानक ने भी खे पहुमारी प्रभु की उस्त करो संत मी सावधानी कागर चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो तन दान सर्वचता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब त्यूज पाय स्थान बहुर न हो वयावन जानु हर तन खाट चलाए जन सोए नानक सह प्राप्त होए खिम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभ त्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगा सब कहमत सगल ते उदास सुंदर चतुर तात का बीता सुंदरसी दृष्टिता ए पाल तिस जान कह मुख पाने गुरु नानक नाम बचन मन सुने ए उनदान जप मन कोए सब जुग मैं ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोटि अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्त करम प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन मरण ताका दुख निवारै दुलभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बाणी एक ना मन माए समानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मल ताके करम सब त्यूज ताकी शोभा बनी नानक गुण नाम सुखमणि दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मल ताके करम सब त्यूज ताकी शोभा बनी नानक एहि गुण नाम सुखमणि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह रामकली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज छेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गा बनाइयां शब्द उतां गावो हरी केरा मन नहीं वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार उकरे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्लां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजी शब्द कनेरी कह नान सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साजना माधार मेरा जन भुखा सब गवाहिया करशां सुख मनाए बसिया जनिशा सब पुजाइया सदा कुरबान किता गुरु बिटो जिस दिए वडे आईया कह नान सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द घर सुपागै घर सुपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत दवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुखोआ तित कर अनद वाजे आनंद सुनो वडभागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन फे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे आनंद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे आनंद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तो दे आ गए अरदास हमारी जियो।

पुता माता की आशीष नेमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजू जगदीश। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तां पौ पिहा काड़ा जियो। सतनाम

जिस देव पुरख विधाता हर रस्ते नहीं जाता जम कंकर नीड़ ना आया सुख नानक शरणी पाया जिस देव